बड़ा सुंदर वर्णन है। मीराबाई को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए और वो भी स्वप्न में। तो देखिए कितनी सुंदरता से वर्णन किया है।

अर्थात जब मैं सोने के लिए अपने शयन कक्ष में गई तो लेटते ही मुझे नींद आ गई और स्वप्न में प्रभु आ गए।

तो कुछ मूल्य चुकाया जाता है। तो अगर गोविंद खरीदा है तो उसका मूल्य क्या था, क्या चुकाया उसके बदले में?

भजन में वर्णन है हमारा जीवन अलग अलग अवस्था में विभिन्न झंझटों में फंस जाता है। हर काम करता है लेकिन एक काम करना ये मन भूल जाता है और वो है ईश्वर का नाम लेना। तो अलग अलग अवस्थाओं में ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से झंझट होते हैं जिनमें मनुष्य उलझ के रह जाता है, उसी का वर्णन है।

0: भी बिलायती चूहे इस दूल्हे के साथी।
1: शाबाश।
0: माँ दूल्हे की बुढ़िया को सटकी

0: experience a musical incarnation. Radio Jagriti 102.7 FM.
1: बाल रक्षार्थ मंत्र।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: जय श्री राम। मल मास और अधिक मास आल्सो नोन एज पुरुषोत्तम मास इज द एस्ट्रोलॉजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिशनल मंथ इन द हिंदू कैलेंडर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द साइकल्स ऑफ द मून। द लूनर मंथ इज अराउंड 29.5 डेज and the solar month is 30 to 31 days. As such, a solar year is made up of 365 days and the lunar year amounts to 354 days. A gap of 11 days increases each year, giving rise to an extra month every 3 years. Nirnay Sindhu outlines, Asankranti Maase Adhik Maase Sputaha Syad. The month that does not